0: नहीं मैं तो अभी नहीं। ये देखिए मेरा टिकट।
1: Strange, but I'm sorry, 125 has taken off.

0: Hello, Air India.
1: Air India. What? There is a time bomb in flight number 125. Hello, who is speaking? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? Hello, hello. क्या बात? किसी ने फोन से बताया कि फ्लाइट नंबर 125 में टाइम बम लग गया. What?
2: Passengers are requested to please collect their baggages and proceed.